आयोजक दीदी बहनी मीडिया हाउस स्टार एटी इवेंट तथा पार्टी प्यालेस वसुंधरा काठमांडू समय 2084 भदौ 20 गते शनिवार बिहान 11 बजे देखि अपराह 4 बजे सम्म। संपर्क नंबर 98576401।